0: दुर्गा प्रसाद सेवापति कानून सब साहब सुनखानी सुनसारा सुदामा की नारी करच दीनदारी विपति ले पति से ऊंचाई विनती कर चिंता पिटले गुरु देवता राजा और पुन भला मान सका निदान खाली है बंकन कहीं ज्योति समना देवी के ही सौगर मन देव चंगा कर मिलन चौधरी का हर्षित मुलाकात करने विचार वर्तन में विचार मुझे तंबू जमा कर दी सही तंबू लगी गए प्रयोजित गतों के दल का मां
1: नारायण
0: जन्यो बाला का ओ जन्यो बाला का ओ जगमग करने मन चित हरने

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

Levante. अरे अपनी फेर आवे रे मेरी प्यारी बुढ़ी मेरी मुंह चुनकिरी बिचारा अले सम मले बात पर ही बसी गोले मो बजे कस्तो खत्म जीवन रे तिला जाड जगर माते राग खुद मले इला ओ पोचिया मेरी बुढ़ी बुढ़ी बंदा रे चले ओ डार्लिंग आई लव लव आई लव यू My shadow could love flying after see you. Hee hee hee. I'm going to be busy now. Tell me, shadow could love or the banana.

बियर खाए नि सब खाए नि रक्सी भने रक्सी मिठा हाँसे रक्सी सब होटल बाल्ने पुगी सुरु सुरुमा।